0: ہی آیا اور بولا کہ کل تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اسی لیے اپنا بوریا بسترا سب تیار رکھنا۔ وہ چور بالکل خوش نہیں ہوا، بس اتنا کہا، سرکار ٹھیک ہے، یہ سب کچھ یہیں رہنے دیجیے۔ جیلر نے پوچھا، جب تمہاری سزا پوری ہو گئی پھر اپنا سامان یہاں کیوں رکھتے ہو؟ چور نے کہا، یہ سب لانا لے جانا یا جھمیلا کیوں؟ کیونکہ پھر اسی جیل میں آؤں گا، اسی لیے سامان رہنے دیجیے۔ مطلب باہر جانے پر بھی چوری نہیں چھوڑوں گا، پھر کرتا رہوں گا اور پھر لوٹوں گا، اسی لیے یہ سامان لانا لے جانا کیوں؟
1: అదే విధంగానే మనం స్వర్గాన్ని కోరటం, తిరిగి రావటం, తిరిగిపోవటం, తిరిగి రావటం, ఈ విధమైనటువంటి ఆ దొంగ పని మాత్రమే మనం వెళ్ళిపోతుంది. కనుక ఈ స్వర్గమును కంటే కూడాను దైవత్వాన్ని పొందటము ఉత్తమమైనటువంటిది అనేటువంటిదిగా కృష్ణుడు బోధిస్తూ వచ్చాడు. మార్పు చెందినటువంటి జ్ఞానతత్వాన్ని బోధించాడు కృష్ణుడు. సత్యనిత్యమైనటువంటి ఒక స్థానమును నిరూపించాడు కృష్ణుడు. దివ్యమైనటువంటి బోధన చేశాడు కృష్ణుడు.
0: ఇసి ప్రకార్ హమారా స్వర్గ కో జానా ఫిర్ లౌటనా پھر جانا اور پھر لوٹنا، ہم اسی چور کی بھانتی کر رہے ہیں۔ اسی لیے شری کرشن نے اپدیش دیا کہ ایشور کو پراپت کرنا ہی اتم ہے۔ شری کرشن نے اپریورتنشیل گیان تتو کا اپدیش دیا، ستیہ نتیہ ستھان کو نروپت کیا۔ شری کرشن نے اتنت دیویہ اپدیش دیا، اپسنہار۔ بھگوان بابا نے मानव जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य कर्म का विश्लेषण इस प्रवचन में किया है। जीवन और कर्म बीज और पेड़ की भांति आपस में संबद्ध रहते हैं, परंतु बीज स्वयं को शिथिल कर ही पेड़ को जन्म देता है। व्यक्ति को भी अपने जीवन में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्मों को प्रधानता देनी चाहिए। अपेक्षाओं से परे कर्मफल प्राप्त होता ही रहता है, अतः मानव को अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पित कर देने चाहिए। भगवान बाबा ने स्पष्ट किया कि भावनाओं के बीज से कर्म वृक्ष उत्पन्न होता है, अतः सदैव सद्भावनाओं का ही चिंतन करना चाहिए। तीन प्रकार के कर्मों के उल्लेख के द्वारा स्वामी ने उपदेश दिया कि ईश्वर की अपेक्षा से जुड़े कर्मों का आचरण ही मानव जीवन का गंतव्य होना चाहिए, जिससे जन्म सार्थक होता है। इसीलिए हमें कर्म मार्ग पर चलकर जन्म को सार्थक करना चाहिए। अस्तु।
2: अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर दिनांक 13 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुना।
3: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.